रजाचा हमारे देना है बेचारे ने वचन विवाह विचार दर्शा सुखी कमा पुछ।